मोहतरम सामईन, यूं तो गाना सुनना या गाने देखना, फिल्में वगैरह, इस पर अहदीस शरीफ में बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जिनके अंदर इन चीज़ों से मना किया गया है। एक पूरा टॉपिक है इस पर, किसी वक्त मैं गुफ्तगु करूँगा, मगर यहाँ आज घर में बरकत के हवाले से ये अर्ज़ कर दूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है बहकी शरीफ में कि गाने सुनने में दिलों में निफाक पैदा होता है। याद रखें, जिन घरों में माँ बाप या बच्चे या रिश्तेदार बैठकर फिल्में देखते हैं, गाने देखते हैं, वक्ती तौर पर तो वो सुकून और मज़ा आता है, मगर हकीकत में दिलों में निफाक पैदा होता है, नफ़रत पैदा होती है। और अल्लाह ताला बहमी जो दिल की मोहब्बत है उसको दूर फरमा देता है। इसलिए कोशिश किया करें घरों में कभी भी गाने न सुने, इससे दिलों के अंदर निफाक और नफ़रत पैदा होती है।